पूनम शिकार कर हृदय माही, फिर फिरती राम आवण नाही। जय सिमरन करै तू केल, दीपक बांध धरियो बिन तेल। सो दीपक अमरक संसारु, काम क्रोध बिख काढ़ी ले मारु। जय सिमरन तेरी गत होए, जो सिमरन रख कंठ परोए। सो सिमरन कर नहीं राख उतारु, गुर प्रसादी उतरै पारु। जय सिमरन नाहीं तुह कानु, मंदर सूवै पटंबर तानु। सेज सुखाली बिगसै जियो, सो सिमरन तू अन दिन पियो। जय सिमरन तेरी जाय बलाए, जय सिमरन तुझ पोहे ना माए। सिमर सिमर हर हर मन गाई, सिमरन सतगुर ते पाई है। सदा सदा सिमर दिन रात, उठत बैठत सास ग्रास। जाग सोए सिमरन रस भोग, हार सिमरन पाई है संजोग। जय सिमरन नाहीं तुझ पार, सो सिमरन राम नाम आधार।

प्रभु आदेश कह कबीर निरंजन आलेख दुनिया होशियार बेदार जागत मुसीहत हौरे पाई निगम होशियार पर हुर पहरुआ देखत जम लै जाई रहाऊ नीम पयो आंब आंब पयो नीम्बा केला पाका चार नालियेर फल सेबर पाका मूर्ख मुग्ध गवार हर भयो खांड खेत मैं बिखरेओ हस्ती चुनेओ न जाई कह कमीर कुल जात पांत ताजो चीटी होए चुन खाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ।

सतगुरु प्रसाद सोदार तेरा कहा सो कर कहा जितना सर्व संभाले वाजे तेरे नाद अनेक असंख केते तेरे वाह बणहारी

गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे थारी सही तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पातशाह श्याम पात साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोई केवड वड्डा डीठा होई

अनक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला। तैत सरबरड़ पहिले निवासा पाणी पावक तनहे किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तै डूबी अले। मन एक न चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाऊ ना हो जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुख दा जन्म पया प्रणवत।

शर्मा पातशाही दसवीं कव्यो बाज बेनती चौ पई हमरी करो हाथ द रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो ब्रत पार हमरे दोष्ट सब तुम काब आप हाथ द मुह बचाव सुखी बसै मोरो परिवार सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दे करे आए सब बैरन को आज सिंगरे आए पूर्ण होई हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे भरे आए मरण काल का त्रास निवरे आए।

चतुर्दश कंता काल पाई ब्रह्मा अवतरा काल पाई शिवजू अवतरा काल पाई कर विषण परकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहीं हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जशन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार दसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी शिव कन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पल मोहबद कियो कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी।

तत्काला कृपा दृष्टो तन जाहिन हरे हो ताके ताप तन कमो हरे हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दोष्ट शास्व सगन कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताई उबारा जिन नर नाम तिहारु कहा दारिद दोष्ट दुख तेरा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दैले उबारी सर्व ठौर मोह सहाई दोष्ट दोख ते ले बचाई। सवैया पाए गए जब ते तुम रे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जाने ओ सरियस पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो बखाने दोहरा सगल।

मन वसावे। नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सचे साहिब त्या नाही कर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आय वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान।

सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवां। थाल विच

कोई जानै कवन इहां जग मीत, जिस होए कृपाल सोई बिद बूझै ताकि निर्मल रीत। कोई जानै कवन इहां जग मीत, जिस होए कृपाल सोई बिद बूझै ताकि निर्मल रीत। राउ मात पिता बनता सुत बंध प, इष्ट मीत अर पाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंतह को ना सहाई।

करता आपे मेल मिलाए करता। लागे साच प्यारो लागे साच प्यारो क्योंकि मैं आमतौर पर देखता भी अज साड़ी समस्या दिनों दिन वधी जाती। प्रचारक प्रचार करते ने बड़ा खूबसूरत करते ने पर कोई इधर की बात कोई उधर की बात बस विच विचाले ने नहीं नहीं गुरबाणी विच विचालनी गुरबाणी तो ऐन टिकाने ला। गुरु अमरदास जी ने कहा जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै होवै तो सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरनाले। हुण जियो का मतलब समझ लो बाहरों नहीं दिखावे मात्र नहीं अंदरों इनू जियो कहते। जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै होवै तो सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरनाले। गुर के चरण हृदय ते आए अंतर आत्म संभाले आप छद सदा रह परने गुरबिन अवर न जाने कोई कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए। जनम सब रोज पढ़ते मैं कोई गुरबाणी तो बाहरों नहीं गल कर भाई जिसका मन इं गुरु नाल एकमिक हो जाए जेड़ा अंदरों गुरु दे नाल जुड़ जाए उदा मन कदे भटके नहीं सकता वो टिक जाता उन्हों ग्रस्त विच रहिंदिआं भी कोई मुश्किल नहीं आ। मैं सवेरे भी मिसाल दित्ती सी कि गुरु पातशाह कहिंदे ने भाई जे परमात्मा की शरण लै लो फिर तुहानू ये माया ते विकार कुछ भी नहीं कह सकते। पर असीं लैंदे नहीं साडी अपनी मत जिहड़ी है वो पिछे नहीं पाउंदे गुरु की मत अगे नहीं लाउंदे इसलिए मुश्किल बनती। लो हुण फिर जोगी अपना मत दस दे भई हे नानक जी असी ते ऐ विचार रखते साडे मत विच ते आ है हाटी बाटी रहे निराले रूख बिरख उदयाने उदयाने कंद मूल आहारो खाइए औदू बोले ज्ञाने तीर्थ नहाइए सुख फल पाइए मैल नला गहराई काई गोरख पूत लोहारी पा बोले जोग जुगत बिद साई। ए लोहारी पा ये गोरखनाथ का चेला है एक का पहला नाम आया चरपट हूँ आया लोहारी पा क्योंकि उन्होंने यतन है कि असी गुरु नानक पातशाह नूं प्रभावित करिए इन्हों अपने मत में लियाई जे एहोजा साडा जोगी साडे पंथ में आ जाए तो पंथ नूं चार चन्न लग जाएंगे। कहिंदे भी साडा मत तो यह है कि हाटी बाटी रहे निराले ये जिहड़े घर दे धंधे ने या ये जिहड़े मेले मसान जिहड़ियां इन्हां तों वक्खरे हो जाओ छड़ दिओ। जोगियां दा इसे गल ते जोर है भी घर छड्डो जे तुसीं मुक्त होना चाहुंदे हो ते सब धीआं पुत्र परिवार छड्डो। ते बाबे नानक दा इह मत नहीं है। बाबा नानक जी दी मैं सवेरे भी गल सुनाई सी भी जोग न भगवी कपड़ी जोग न मैले वेस नानक घर बैठे हाँ जोग पाई है सतगुर कै उपदेश। ग्रस्त विच रहिंदे हां परिवारक जिम्मेवारियां नूं निभाउंदे हां जे असी गुरु दे कहे अनुसार चलांगे घर विच ही जोगी बन जाए क्योंकि पातशाह ने स्पष्ट कहा है गली

0: तवी तत्ती जेठ का महीना तत्ता रेत तत्ती सरकार तत्ती पर ठंडे कौन सिर्फ साहेब गुरु अर्जन देव साहेब जी। किसे राइटर ने लिखिए इन अखा ने कई पतंगिया उजते लाड़ते सर्दिया देखिया है मैं कई बेर चुप किते गुंचिया देगा बिच भी कर दिया देखिया है तत्ती रेत उत्ते कई नमाजिया मैं कलमा यार दा पढ़दिया वेख्या है पर मैं की दसा अर्जन गुरु ताई किदा चिखा ते चढ़दिया
1: देखिया है।
0: उधर कौन ईरान दे रहण वाला फकीर मिया मीर लाहौर विच रह रहा सी उसनू पता लगा कि मेरे सतगुरु तत्ती तवी ते बहाए गए किवें ना किवें सतगुरां दे कोल पहुंचिया देख के सतगुरु तत्ती तवी दे उत्ते बैठिया पीर दियां ताहां निकल गईयां। कोई शहरी कहिंदा मियां मीर ने पुछिया सतगुरां नू तवी तपदी बांग तंदूर दा ता तन भर दिता सारा छालिया ने जिमें बेर ते गुच्छे अंगूर दा ता कोमल कलियां तो कूला रेशमा तो जिसम ढड़के होया मनूर दाता ओए कल तख्त उत्ते अज तवी उत्ते की खेल रचाया रब्बी नूर दाता। सतगुरां ने हस के कहा फकीर जी ए सतगुरु दा भाणा है अकाल पुरख दा भाणा मिठा करके मिलना है पर मियां मीर दी तसली ना होई मार के तहां तवी दे कोले सतगुरु दे कोले इउं कहण लग्या बई

0: केरबोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

को पाया, आपे मेले परम चुकाया, बेमोहताज बे अंत अपारा, सच पतीजै करण हारा, नानक भूले गुर समझावे, एक दिखावे साच टिकावे, बसंत महला पहला।

आप आपे बशरु गऊ खीर आपे मंदर थम शरीर आपे करनी करनहार आपे गुरमुख कर विचार तू कर कर देख करनहार जोत जी असंख दे आधार तू सर सागर गुण गहीर तू अकुल निरंजन परम हीर तू आपे करता करन जोग नेह केवल राजन सुखी लोग नानक त्रापे हर नाम स्वाद बिन हर गुर प्रीतम जन्म वाद बसंत हंडोल महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नौ सत चौदह तीन चार कर महलत चार बहाली चारे दीवे चहो हथ दिए एकाएका वारी मेहरवान मधुसूदन माधो ऐसी सकत तुम्हारी रहाओ कर कर लश्कर पावक तेरा धर्म करे सिख

एक रत्ती तेल ना कटाई, जानकी पुस्तक है राम नामा, दह दिस सुबा पाई। निंदक साकत खाव ना सके तेल, अपने घर लूकी लाई। जान को जान मिल सुबा पावे, गुण में गुण पर गास्ता। मेरे ठाकुर के जन प्रीतम प्यारी, जो हो दासन दासा। आपे जाले परंपर करता, आपे मेल मलावे। नानक गुरमुख सहज मलाई, ज्यो जल जल है समावे। बसंत महला पंजवा घर पहला दो तुकिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुन साखी मन जप प्यार,

चर नरेन ले मस्तक लाऊ कर कृपा देन रहाऊ गनका उदरी हर कह तोत गज इंद्र त्यायो हर कियो मुख बिपर सदामे दाल्द पंज रे मन तू पी पज गोविंद बदक उधारियो खम परहार कुबजा उदरी अंगुष्ट धार बिदर उधारियो दास्त पाई रे मन तू पी हर त्याय प्रहलाद रखी हर पैज आप बस्तर सीनत द्रौपदी रखी लाज जिन जिन सेव्या अंत बार रे मन सेव तू परह पार तन्नै सेव्या बाल बुद्ध त्रिलोचन गुरमिल पई सिद्ध बेणी कौ गुर कियो परगास रे मन तू पी होहि दास जय देव त्याग्यो अहम।

0: तिनका गुण अवगुण ना बिचारियो कोई।
1: एह बिद देख मन लगा सेव, कबीर त्यायो एक रंग। नाम देव हर जियो बसह संग, रविदास त्याए प्रभ अनूप। गुरु नानक देव गोविंद रूप, बसंत महला पंजवां। अनक जन्म भ्रमे जोन माहे, हर सिमरन बिन नरक पाहे। भगत बिहूना खंड खंड, बिन बूझे जम देत दंड। गोविंद भजो मेरे सदा मीत, साच शब्द कर सदा प्रीत। रहाउ संतोख न आवत कहूं काज, धूम बादर सब माया साज। पाप करम तो नह संगाई, भिख का माता आवै जाई। हौ हौ करत बदे बेकार, मोह लोभ डूबो संसार। राम क्रोध मन वास किया, सुपने नाम ना हर लिया। कब ही राजा कब मंगन हार, दुख सुख बांधो संसार। मन उधरन का साज नाही, पाप बंधन नित पौत जाहि। ईठ मीत को सखा नाही, आप बीज आपे ही खाहि। जा कह कीने होत बेकार, से छोड़ चलिया किन मह गवार। माया मोहे बहु परमिया, किरत रेख कर करमिया। करने हार अलिप्त आप, नहीं लेप प्रभ पुन पाप।

लाई, नानक दास प्रभ की शरणाई। बसंत की वार महल पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम त्याए कै हो हरिया पहाई, कर्म लखन तै पाई है एह रुत सुहाई। वन त्रिण त्रे पवन मौलिया, अमृत फल पाई। मिल साधु सुख उपजै लथी सब छाई। नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ ना ताई। पंजे बदे महाबली कर सच्चा टोआ, अपने चरण जपायन विच दयो खुड़ोआ। रोग सोग सब मिट गए नित नवान रोआ, दिन रहन नाम त्याईंदा।

जंत सब खसम के कौन कीमत पावे कहन त्याइन सुन नेता से भगत सहावे अगम अगोचर साहेबो दूसर लवे ना लावे सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावे बसंत बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मौली धरती मौलिया आकाश घट घट मौलिया आत्म प्रगास राजा राम मौल

बादो दारल दुख सहयो न जाए, मेरो चपल बुद्ध स्यो कहां बसाए। रहाओ सनक सनंदन शिव सुकाद, नाभ कमल जाने ब्रह्माद। कब जन जोगी जटा तार, सब आपन अवसर चले सार। तू अथाह मोहे था नाही, प्रभ दीना नाथ दुख कहो काहे। मोरो जन्म मरण दुख आस तीर, सुख सागर गुण रौ कबीर। नायक एक बनजारे पांच, बर्द पचीसक संग काच। नौ बहिया दस गोने आहे, कतन बहतर लागी ताहे। मोहे ऐसे बनज स्यों नहीं काज, जेह घटै मूल नित बढ़ै ब्याज। रहाओ सात सूत मिल बनज कीन, कर्म पावनी संग लीन। तीन जगाती करत रार, चलो बनजारा हाथ चार। पूंजी हैरानी बनज टूट, दह दिस टांडो गयो फूट। कह कबीर मन सरसी काज, सहज समानो ता भरम पाज। बसंत हिंडोल कर दूजा।

चेतना चलै मन भयो पंग रहाउ। एक दिवस मन भई उमंग, घस चंदन चोआ बहु सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माए। जहां जाइए तह जल पखान, तू पूर रहो है सब समान। वेद पुराण सब देखे जोए, ऊहां तो जाइए जो ईहा ना होए। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सकल बिकल भ्रम काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बसंत बाणी नाम देव जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साहिब संकट वै सेवक भजै, चिरंकाल ना जीवै दो कुल लज्जै। तेरी भगत ना छोड़ो पावे लोग हसै, चरण कमल मेरे हियर बसै रहाओ। जैसे अपने तन है प्राणी मरण मांडै, तैसे संत जना राम नाम ना छाडै। गंगा गया गोदावरी संसार के कामा, नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा। लोग लहर आ

भादो खूब राज तू तिस ते खरी उतावली रहाउ। जैसे कुरंक नहीं पायो भेद तन सगंध ढूंढै परदेस। आप तन काजो करे बीचार तिस नहीं जम कंकर करे खुआर। पुत्र कल

पाछे किसह पकार है पियो पियो साधु की जो लेहे ओट तेरे मिट है पाप सब कोट कोट कहर वदास जो जपै नाम तिस जात ना जन्म ना जोन काम बसंत कबीर।

चाकी का चीतरा कहाँ ले जाए। सीके पर तेरी बहुत डीठ, मत लकड़ी सोटा तेरी परे पीठ। कह कबीर भोग भले कीन, मत को मारे ईंट टेम। राग सारंग चौप दे महला पहला, घर पहला एक ओंकार सतनाम।

चरण गहे जगजीवन प्रभ के हौमे मार नबेरी रहाओ। पूरन परम ज्योत परमेश्वर प्रीतम प्राण हमारे, मोहन मोहे लिया मन मेरा समझत शब्द बिचारी। मनमुख हीन होछी मत झूठी, मन तन पीर शरीरे, जबकि राम रंगी लहराती राम जपत मन तीरे। हौ मैं छोड़ पई बैरागन तब साची सुरत समानी, अकुल निरंजन स्यो मन मानिया बिसरी लाज लुकानी। पूर भविख नाही तुम जैसे मेरे प्रीतम प्राण आधारा, हर कै नाम रती सुहागन नानक राम पतारा। सारंग महला पहला हर बिन क्यों रहिए दुख व्यापै, जिहवा साध न फीकी रस बिन बिन प्रभ काल संता पै रहाओ। जब लग दर्शन परसै प्रीतम तब लग भूख प्यासी, दर्शन देखत ही मन मानिया जल रस कमल बिगासी। ऊनम कनहर गरजै बरसै कोकिल मोर बैरागै, तरवर बिरख बिहंग पोयंगम घर पेर तन सोहागै। कुचिल करूप कुनार कुलखनी बिरका सहज ना जानिया, हर रस रंग रसन नहीं तृप्ति दुर्मत दुख समानिया। आए ना जावे ना दुख पावे ना दुख दर्द शरीरे, नानक प्रभ ते सहज सुहेली प्रभ देखत ही मन धीरे। सारंग महला पहला दूर नाही मेरो प्रभ प्यारा, सतगुर बचन मेरो मन मानिया हर पाए प्राण अधारा। रहाउ इन विद हर मिलिया वर कामन तन सुहाग प्यारी, जात बरन कुल सहसा चूका गुरमत शब्द बिचारी। जिस मन मान अभमान ना ताको हिंसा लोभ बसारी, सहज रवै वर कामन फिरकी गुरमुख रंग सुवारी। जारो ऐसी प्रीत कटंब संबंधी माया मोह पसारी, जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुबदा कर्म बेकारी। अंतर रत्न पदार्थ हित को दुरै न लाल प्यारी, नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर तारी। सारंग महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर के संत जना की हम तूर मिल सत संगत परम पद पाया, आत्म राम रहया भरपूर रहाउ। सतगुर संत मिले शांत पाईए हिल विख दुख काटे सब दूर, आत्म ज्योत पई प्रफूलत पुरख निरंजन देखिया हजूर। वड्डै भाग सतसंगत पाई हर हर नाम रहया भरपूर, अठ सठ तीरथ मज्जन किया सत संगत पग नाए धूर। दुर्मत बेकार मलीन मत होशी हिरदा कसुभ लागा मोह कूर, बिन कर्मा क्यों संगत पाईऐ हौ मैं व्याप रहया मन चूर। हो दयाल कृपा कर हर जी मांगो सत संगत पग धूर, नानक संत मिले हर पाईऐ जन हर पेटिया राम हजूर। सारंग महला चौथा गोविंद चरणन को बलिहारी भवजन जगत न जाई तरना, जप हर हर पार उतारी रहाउ। हृदय प्रतीत बनी प्रभ केरी सेवा सुरत बिचारी, हर दिन राम नाम जप हृदय सर्ब कला गुणकारी। प्रभ अगम अगोचर रव्या सर्ब थाई मन तन अलख अपारी, गुर कृपाल भये तब पाया हृदय अलख लखारी। अंतर हर नाम सर्ब धरनी तर साकत को दूर भया अहंकारी।

किंचित कृपा तहारी, नानक जिनको नदर पई है तिनकी पैज सुवारी। सारंग मोहल्ला चौथा, हर हर अमृत नाम देहू प्यारी। जिन ऊपर गुरमुख मन मानिया तिनके काज सुवारी रहाउ। जो जन दीन भये गुर आगे तिनके दुख निवारी। आन दिन भगत करह गुर आगे गुर कै शब्द सुवारी। हृदय नाम अमृत रस रसना, रस गावह रस बिचारी। गुर प्रसाद अमृत रस चीनिया, वे पावह मूख द्वारी। सतगुर पुरख अचल अचलह मत, जिस दृढ़ता नाम अधारी। तिस आगे जीओ देवो अपना, हौ सतगुर कै बलिहारी। मन मुख ब्रह्म दूजै पाए लागी, अंतर अज्ञान गुबारी। सतगुर दाता नदर ना आवे, ना उरवार ना पारी। सर्वे कट कट रविया स्वामी, सर्व कला कल तहारी। नानक दा सुन दास कहते है, कर कृपा ले हो उबहारी। सारंग महला चौथा, गोविंद की ऐसी कार कमाई। जो किस करे सो सत कर मानू, गुरमुख नाम रहो लिव लाई रहाओ। गोविंद प्रीत लगी अत मीठी, अवर विस्तर सब जाय। फन दिन रहस भया मन मानिया, ज्योति जोत मलाए। जब गुण गाए तब ही मन तृप्त, शांत वसै मन आए। गुर कृपाल भये तब पाया, हर चरणी चित लाए। मत प्रगास भई हर त्याया, ज्ञान तत् लिव लाए। अंतर ज्योत प्रगटी मन मानिया, हर सहज समाध लगाए। हृदय कपट नित कपट कमावह, मुख हो हर हर सुनाए। अंतर लोभ महा गुबारा, तोह कूटै दुख खाए। जब सो प्रसन्न भये प्रभ मेरे, गुरमुख परचा लाए। नानक नाम निरंजन पाया, नाम जपत सुख पाए। सारंग महला चौथा, मेरा मन राम नाम मन मानी। मेरा ही रह सतगुर प्रीत लगाई, मन हर हर कथा सुखानी रहाओ। दीन दयाल हो जन ऊपर, जन देव हो अकथ कहानी। संत जना मिल हर रस पाया, हर मन तन मीठ लगानी। हर कै रंग रते बैरागी, जिन गुरमत नाम पछानी। पुरख है पुरख मिलया सुख पाया,

गुर प्रसाद जाप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी की सच क्या कथी कथे कथ देख मैं कथ न कथ न जाय जो तुझ पावे सोई आखा

तुम्हारी वर्णन सके महिमा जो तुम्हारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी

साजन प्रेम सुरा अखे तार लगन गुर तुठ सज्जन मिलया जन नानक सुख सवन।

गुरमुख हर जल पाए, अंतर कमल प्रगासिया, अमृत भरिया अघाए, नानक सतगुर मीत कर सच पा।

कर्मा की संत बिन बिन के सब बन जे तेरे की सिरता कर्म पर हो सा हुकुम करे मैं उर्गा साचे के देव देव पंडा पंजे बजे महामिल कर रोग कर दिन नाम आया कर

हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु हर पाया गुरु

तुम है जाड कोई अवर ना त्याऊ जो अवर जाऊ सुतम थे पाऊ सेवक सिख मारे धारी है चुन चुन सत्र मारे मारी है आप हाथ दे मुझे उभरे आए मरण काल का त्रास निभरे आए हूँ जो सदा हमारे बच्चा सरिया सो जो करे और अच्छा राख ले मोह राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुमह बुरी चतरदस कंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए सब जू अवतरा काल पाई कर भीषण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा जू थी जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार दाही मारा जवन काल सब जगत बनायो देव दयांत जशन उपजायो आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार दसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी शिव कान को शिव गुण सुख दियो सतरन को बलम वध कियो गड़ गड़ के अंतर की जानत बले बुरे की बीर पछानत चिटी दे गुंजर स्थूला सबर कृपा दृढ़ कर फूला संतन दुख पाए दे दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना है गड़गड़ के बट बड़ की जाना है जब उद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देही अपार जब या करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत दे दर सब हूं जेते बदन श्रेठ सब तारे अब अपनी बूझ जा रहे तुम सब ही तेरे तंदरालम जानत भेद भेद हरियालम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद्य नील अनाद्य असंभ जाका मूड चारत भेदा जाको पेब ना पावत भेदा तां कौ कर पाहन अनुमानत महामूड कस भेद न जानत महादेव कौ कर सदा सेव निरंकार का चीन तनह पेब आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन भिन तो है तेती तुमरा लखन जाए बसार कहे बिद सजा प्रथम संसार एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहीं भूपा अंडज जीरज सिद्ध जकीनी उत्पुज खान बहोर रच दीनी कहूं भूल राजा व बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव आदि जुगाद स्वरूप सुयंपव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख वार सिख संग रो दोषी जिते उठ बुद बाता सकल मलेश करो रण खाता जे अस्तुज तब सरणी परे दिन के दुष्ट दुख तब मरे पुरख जवन भग परे त्यारे दिन के तुम संकट दब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट न आए है रक्षा हुई ताए सब काला दुष्ट रिष्ट उठर तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहिन हरे हो दांके दाव तन कमो हरे हो रद सिद कर्मो सब होई दुष्ट शास्वत कह न कोई

खड़ग केत में शरण तिहारी आप हादल उबारी सर्व धर्म हो सहाई दुष्ट दोग तेले बचाई। सतनाम श्री वाहिगुरु जी राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु तां पाया सहज सेती मन भजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द का बनाइयां।

अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारी कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कर दे रहा है करदा तेरा सब किश है जिस दे सो पावे

आद पूर्ण मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर सिमरांत शांत सर्वतर रमण नानक अगनासन जगदीशर आद पूर्ण मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर सिमरांत शांत सर्वतर रमण नानक अगनासन जगदीशर वेखन सुनन सुनावन मन में दृढ़िया साच पूर रहो सर्वतर मैं नानक हर रंग राच पौड़ी हर एक निरंजन गाइए सब अंतर सोई कारण कारण समर्थ प्रभ जो करे सोई किन मैं थाप थापदा तिस बिन नहीं कोई खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रभिया सब लोई जिस आप बुझाए सो बुझ सी निर्मल जान सोई खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रविया सब लोई जिस आप बुझाए सो बुझ सी निर्मल जन सोई वाहिगुरु जी का खालसा

सहाय वास्त्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले आए संत गुरते मरदास रामदास हुई सहाय अज हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई तब जाए कि बहादुर सिमरिय करनो मेरी आवे सब साई कोई सहाय दसवे पातशाह सहे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब साई कोई सहाय दसा पातशाह के पावन स्वरूप धन संत सहे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पाठ दर्शन दादा ध्यान सर जी गुरना जी अजा प्यारिया चौहान चर्चा ध्यान चारिया मुख्या पंजा साखा सर्व गुरुद्वारा का ध्यान सर जी गुरना जी जिला सिंह सिंह ने धर्म की चखिया से चढ़े पंच पारी कटवाए सुखा सुना लो मजा।

ग्रंथों के दालिखे प्रवान करने होया को नाम आपका निया पाचा पर्वत ने दूर निर्वाह करके हालिया भरिया सदा रूप से फुलते नाम अर्पण कीतिया पातशाह जी आपिया के दर दी तेग भाई का भाई भुपिंदर सिंह जी वालों भुपिंदरजीत सिंह जी वालों पातशाह जी तन मन धन करके सेवा कमाना की गई है। समूह परिवार ने पातशाह जी रल मिल करके

श्री गुरुदेव नमः अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन मह मिटावो सिमरो जास विशंभर एक नाम जप अगंत अनेक वेद प्राण सिमरत सुधाकर कीने राम नाम एकाखर किनका एक जिस जीव सावै ताकि मह मांगनी न आवै कंखी एक दर्श तुहारो नान कुन संग मोहे उधारो सुख मनी सुख अमृत प्रव नाम भक्त जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभु कै सिमरन गर्भ न बसै प्रभु कै सिमरन दूग जम नसै प्रभु कै सिमरन काल पर हरै प्रभु कै सिमरन दुश्मन तरै प्रभु सिमरत कछ विघ्न न लागै प्रभु कै सिमरन अंजन जागै प्रभु कै सिमरन भव न व्यापै प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै प्रभु का सिमरन साध कै संग सर्वन धान नान घर रंग प्रभु कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नव निध प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभु कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभु कै सिमरन दुर्गह मानी प्रभु कै सिमरन होय सो भला प्रभु कै सिमरन सो फल फला से सिमरह जिन आप सिमराए नानकता कै लागो पाए प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभु कै सिमरन उधर मूचा प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभु कै सिमरन सब किछ सुझै प्रभु कै सिमरन नाहीं जम त्रासा प्रभु कै सिमरन पूर्ण आशा प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम हृदय माहे समाए प्रभु जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमरह से धन बनते प्रभु को सिमरह से पत बनते प्रभु को सिमरह से जन प्रवान प्रभु को सिमरह से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरह से बेमोहताजे प्रभु को सिमरह से सर्व के राजे प्रभु को सिमरह से सुखवासी प्रभु को सिमरह सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जन आप दयाला नानक जन के मंगर वाला प्रभु को सिमरह से पर उपकारी प्रभु को सिमरह तन सद बलिहारी प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे प्रभु को सिमरह तन सुख बिहावे प्रभु को सिमरह तन आत्म जीता प्रभु को सिमरह तन निर्मल रीता प्रभु को सिमरह तन अंध कनेरे प्रभु को सिमरह बसे हर नेरे संत कृपाते अंधन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभु कै सिमरन कार्य पूरे प्रभु कै सिमरन कभू न झूरे प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सहज समानी प्रभु कै सिमरन निचल आसन प्रभु कै सिमरन कमल विगासन प्रभु कै सिमरन अनहद झुनकार सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार सिमरह से जन जिन को प्रभु मया नानक जन जन सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग वेद उपाए हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चौं कुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगल अकारा हर सिमरन में आप निरंकारा कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तन पाया सलोक दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ अष्टपदि जय मात पिता सुत मीत न पाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई जय महाभयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चलै जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहि उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावहु सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जप्त होए सुखिया लाख करोड़ी बंधन परै हर का नाम जप्त निस्तरै अनक माया रंग तिख न बुझावै हर का नाम जप्त आघावै जे मार्ग एह जात अकेला तह हर नाम संग होत सोहेला ऐसा नाम मन सदा त्याइयै नानक गुरमुख परम गत पाइयै झूठत नहीं कोट लख वाही नाम जप्त तह पार पराही अनक विघ्न जह आय संघारै हर का नाम तत्काल उधारै अनक जोन जन मैं मर जाम नाम जपत पावै विश्राम हौं मैला मल कबहु न धोवै हर का नाम कोट पाप खोवै ऐसा नाम जपहु मन रंग नानक पाइय साध कै संग
जिह मार्ग के गने जाहे न कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा। जह पैंडै महा अंधक भारा, हर का नाम संग उजियारा। जहां पंथ तेरा कोना सुजानू, हर का नाम तह नाल पछानू। जह महा भयान तप बहु काम, तह हर के नाम की तुम ऊपर शाम। जहां त्रखा मन तुझ आकर्ष है, तह नानक हर हर अमृत बरख है। भगत जना की बरतन नाम, संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत जन रात, हर हर औकद साधक मात। हर जन कै हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान। मन तन रंग रते रंग एक, नानक जन कै बिरत विवेक। हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर का नाम जन को त्रिपत भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब पर न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर का नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे वियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालक दीना, हर धन जन को आप प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग केते तरे। पार जात इह हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम संत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाईऐ, संत की सेवा नाम ते आईऐ। नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्व टंडोल। पूजस नाहि हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत विख्यान। योग अभ्यास कर्म धर्म करिया, सगल त्याग मन मध्य करिया। अनक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान हो में बहु रतना। शरीर कटाए हो मैं कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, महा उदास तपीसर थीवै। अगन माहे होमत प्राण, कनक अस्व है वर भूम दान। न्योली कर्म कर बहु आसन, जैन मार्ग संजम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावै, तौ पी होमै मैल न जावै। हर के नाम संसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करे दिनस अर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करे, मन ते कभू न बिख्या टर। जल धोवै बहु देह अनीत, शुद्ध कहाँ होए कच्ची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उधरे पत्त बहमूच। बहुत स्याणप जमका पौ व्यापै, अनक जतन कर कृष्ण ना त्रापै। भेख अनेक अग्न नहीं बुझै, कोट अपाव दरगह नहीं सिझै। झूठ सुनाही ऊह पयाल, मोहे व्यापै माया जाल। अवर करतूत सगली जमडानै, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै। हर का नाम जप दुख जाए, नानक बोले सहज सुभाए। चार पदार्थ देखो मांगे, साध जना की सेवा लागे। जेको अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सद गावे। जेको अपनी शोभा लोरे, साध संग ए होमै छोरे। जेको जन्म मरण ते डरे, साध जना की सरणी परे। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा। सगल पुरख मह पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान। आपस कौ जो जाने नीचा, सोऊ गनिय सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल कीरीना, हर हर नाम तिन घट घट कीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, देखै सगल सृष्ट साजना। सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा। निर्धन कहो धन तेरो नाओ, मिथावे कहो नाव तेरा थाओ।
निमाने कौ प्रभ तेरो मान सगल घटा को देव हो दान कर्म करावन हार स्वामी सगल घटा के अंतर जामी अपनी गत मित जानो आपे आपन संग आप प्रभराते तुमरी औसत तुम ते होए नानक अवर न जान सकोय सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हरिया सगल उद्यम मह उद्यम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जास सुन रसन बखानी सगल थान ते ओह उत्तम थान नानक दे घट वसै हर नाम श्लोक निर्गुण यार इन्या सो प्रभ सदा समाल जिनकी आते चीत रख नानक ने भी नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत पुरानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार ती गारिया गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोवन भोजन सुख सूध बिरद भया ऊपर साख सैन मुख अप्याओ बैठ काओ दैन एह निर्गुण गुण कछु न बुझ है बख्स ले हो तव नानक सीज है जे प्रसाद धर ऊपर सुख बस है सुत भ्रात मीत बनता संहस है जे प्रसाद पिवे शीतल जला सुखदायी पवन पाप अमुला जे प्रसाद भोग है सब रसा सगल समग्री संग साथ वसा दीने हस्त पाव कर्ण नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संगरचना ऐसे दोख मूड अंध व्यापे नानक काड ले हो प्रभ आपे आद अंत जो रखनहार तिस स्यो प्रीत न करे गवार जा की सेवा नव निंद पावे ता स्यो मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर सद सदा हजूरे ताको अंधा जान दूरे जाकी टहल पावे दरगह मान तिसे बसारे मुग्ध अजान सदा सदा एह भूलनहार नानक राखनहार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै साथ छोड़ झूठ संग मचै जो चढ़ना सो अस्थिर करमानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर्दव प्रीत भस्म संग होए अंधकूप मह पत बिकराल नानक काट ले हो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर भेख अंतर मल माया छप्स नाही कछ करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोग स्वान अंतर अगन बाहर तन स्वाह गल पात्र कैसे करै अथाह जाकर अंतर बसै प्रभ आप नानक ते जन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै करगह लेहो ओढ़ निभावै कहाँ बुझारत बुझै डोरा निस्कहिया तौ समझै भोरा कहाँ बिसन पद गावै गुंग जतन करै तौ की सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत उहां उस गवन करतार करना में दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा करै संग सहाय सोआवै न चीत जो बैराई ता सो प्रीत बलुआ के गृह भीतर वसै अनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर्मा न मनह प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ द्रोह याहू जुगत बिहानी कई जन्म नानक राख ले हो आपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा महसूब कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक देनहार प्रभ छोड़ कै लाग अन सुए नानक कहो न सी जय बिन नावै पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै एक बस्त कारण विखोट गुवावै एक भी न दे दस भी हिर ले तौ मऊड़ा कहो कहाँ करे जिस ठाकर स्यो नाही चारा ताको कीजै सद नमस्कार
ਜਾਂ ਕੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਾਹੂ ਮਨ ਬੂਠਾ। ਜਿਸ ਜਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ, ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਪਿਨ ਪਾਇਆ। ਅਗਣਤ ਸਾਹੋ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ, ਖਾਤ ਪੀਤ ਵਰਤੈ ਅਨੰਦ ਉਲਾਸ। ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ ਕਛ ਬਹੁਰ ਸਾਹੋ ਲੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੋਸ ਕਰੇ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ, ਬਹੁਰ ਉਸਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਤਿਸ ਆਗੈ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮਤ ਹੈ। ਉਸਤੇ ਟੋਗਨ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ, ਸਰਪੁਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨ ਅਨੇਤ। ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉਂ ਰੰਗ ਲਾਵੈ, ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹ ਮਨ ਪੁਛਤਾਵੈ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਚਲ ਨਹਾਰ, ਲਪਟ ਰਹਿਓ ਤਹਿ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ। ਬਟਾਉ ਸਿਉਂ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੇਹ, ਤਾਂ ਕੋ ਹਾਸਨ ਆਵੈ ਕੇਹ। ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈ ਲਾਈ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸੁਭਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ।

मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान अस्त्र भगत साध की शरण नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन मिथ्या हस्त पर दर्द कोह रह मिथ्या नेत्र देखत परत्रय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बकार को धाव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेख विकारा बिन बुझे मिथ्या सब भये सफल देह नानक हर हर नाम लय बिरथी ताकत की आर जा साज बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय मेघ बिना जो खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम जो कृपन के निराप नाम धन धन ते जन जे कट बस्यो हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ रहत अवर कछ अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत जानन हार प्रभु परबीन बाहर भेख न काहू पीन अवर उपदेश आप न करै आवत जावत जन्मै मरै जिस कह अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरै संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आप है माने आप है आप करत ने बेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा उपाव स्यान सगल ते रहत सब कछ जाने आत्म की रहत जिस भाव है तिस लय लड़ लाए थान तनंदर रहया समाय सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरी श्लोक।

प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जय प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकुर कौ रख मन माहे जय प्रसाद सुगंधत तन लावह तिसको सिमरत परम दत्त पावह जय प्रसाद बसह सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर जय प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पह सिमरो तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है ध्यावन जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हटावै तिसे त्याग कत अगर लुभावै जय प्रसाद सुख तेज सोई जय मन आठ पहरता का जस गावी जय जय प्रसाद तु सब को मन मुक्ता को जस रसन बथाने जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पावै नानक पत सेती घर जावे जय प्रसाद आरोग कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जय प्रसाद तिर ओला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरणी पर ठाकुर प्रवता कै जय प्रसाद तुझको ना पहुँचे मन सास सास सिमरो प्रभु ऊचे जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानकता की भगत करे जय प्रसाद आपूकम पहरे जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जय प्रसाद अश्व हस्त अश्वारी मन तिस प्रभु कौ कबहू ना बिसारी जय प्रसाद बाग मिल धना राख प्रोय प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत सद तिसे त्याई तिसे त्याई जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रख है जय प्रसाद करह पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जय प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद तेरी पत रह गुर प्रसाद नानक जस कह जय प्रसाद सुनह कर्णनाद जय प्रसाद पेख बिस्माद जय प्रसाद बोल है अमृत रसना जय प्रसाद सुख सह जय बसना जय प्रसाद हस्त कर चल है जय प्रसाद संपूर्ण फल है जय प्रसाद परम गत पाव है जय प्रसाद सुख सहज समाव है ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तू प्रगट संसार इस प्रभु को मूल न मन हो विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ता को जाप जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसह जान मन सदा हजूरे।

प्रभ दया ते मत उत्तम होए। सर्वनिधान प्रभ तेरी मया, आपहु कछु न किन्हु लया। जित जित लावहो तित लगे हर नाथ, नानकिन कै कछु न हाथ। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कह सुमुक्ता होए। सुन मिता नानक बिनवंता, साध बिना की अचर्ज कथा अष्टपदी। साध कै संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली पोत। साध कै संग मिटै अभिमान, साध कै संग प्रगटै सुज्ञान। साध कै संग बुझै प्रभ नीरा, साध संग सब होत न बेरा। साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरनै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी। साध कै संग अगोचर मिलै, साध कै संग सदा पर फुलै। साध कै संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग नकत हूं तावै, साध संग अस्थित मन पावै। साध कै संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब नीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस्यो नहीं बैर, साध कै संग न बीगा पैर। साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग नाही हौताप, साध कै संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बन आई। साध कै संग न कब हूं तावै, साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बस अगोचर रहै, साधु कै संग अजर सहै। साध कै संग बसै थान ऊचै, साधु कै संग महल पहुँचै। साध कै संग दृढ़ सर धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान। साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै। साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्वथान गम, नानक साध कै संग सफल जन्म। साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल। साध कै संग कुलोकत है, साध कै संग नरक पर हरै। साध कै संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिचरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावै, साध कै संग ना बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध हृदवसै, नानक उदरै साध सुन रसै। साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध कै संग ना मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट जीठा। साध संग भय आज्ञाकारी, साध संग गत भई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा भेद न जानह, जेता सुनह तेता बखियाने। साध की उपमा त्यों गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभु भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे एक बिन कोए। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल मह कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक, जैसे सूर सर्व कौ शोक। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंक कौ लागे तुल्पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, ज्यों बसुदा को खोदै को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक ज्यों पावक का सै।

जैसे तर ऊपर आकाश ब्रह्मज्ञानी के मित्र सत्र समान, ब्रह्मज्ञानी का नहीं अभिमान। ब्रह्मज्ञानी ऊंच दे ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा, ब्रह्मज्ञानी से जन भये नानक दिन प्रभ आप करे। ब्रह्मज्ञानी सगल की ना आत्मरस ब्रह्मज्ञानी की ना, ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्मज्ञानी ते कछ बुरा न पाया। ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्मज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्मज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्मज्ञानी एक उपर्यास ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्मज्ञानी का गरीबी समाहा, ब्रह्मज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्मज्ञानी का नाही धंधा ब्रह्मज्ञानी ले तावत बंधा, ब्रह्मज्ञानी का हो सो फला ब्रह्मज्ञानी सो फल फला। ब्रह्मज्ञानी संग सगल उधार।

ब्रह्मज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्मज्ञानी के नाम परवार, ब्रह्मज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्मज्ञानी अहंबुद्ध त्यागत, ब्रह्मज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्मज्ञानी के घर सदा आनंद, ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्मज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्मज्ञानी का होए अचिंत, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रवाप, ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी

ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए अधाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का।

नानको अपरस सगल निस्तार अष्टपदी। मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श, परत्रय रूप न पेख नेत्र साधु की टहल संसंग हेत। कर्ण न सुने काहू किंदा सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद दिखिया पर हरय मन की बासना मन ते टरय। इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कोट में देखो ऐसा अपरस। वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्ण की माया ते होय भिन्न। कर्म करत होवे निह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहो फल की इच्छा नहीं बाचै केवल भगत कीर्तन संग्राचै। मन धनंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवर नाम जपावै नानक ओह वैष्णो परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग, मन से बिनसा सगला परम कर पूजै सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नितनीत मन तन अरपै बिसन प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन प्रबुद राम नाम आत्म सोद, राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो न आवै। वेद पुराण सिमृत बुझै मूल सुख मह जान अस्थूल, चौं वर्णा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौं वर्णा में जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए साध संग पावै जन कोय। कर कृपा अंतर उतार पस प्रेत मुग्ध पाथर को तार, सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुणगान। काहू जुगत कितै ना पाइया धर्म नानक दिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म। जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास, आत्म राम तिस नगरी आया दास दसन तन पाए तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान सो दास दर गह परवान, अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी परे। सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सो।

तैसा अमृत तैसी भिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओह पुरख कहिए जीव मुक्त, पुरख पावै सोई पुन होग, पसरे वाप होए अनंत तरंग।

नानक रचना प्रवृति बहुविध अंक प्रकार अष्टपदी कई कोट होय पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पय तीर्थवासी कई कोट बन पर में उदासी।

कई बार पसर्यो पासार सदा सदा एक एकंकार कई कोट कीने बहुपात प्रभ ते होय प्रभ नाह समात ताका अंत न जाने को आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत के बेते सदा निहारे एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर पहे सद सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सहज समाव है अपने जन को सास सास समारे नानक हुए परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नही को नानक तिस बलहारण जल थल महियल सोए अस्परी करण करावन करना जोग जो तिस भाव सोई होग खिन महथाप उथा पुनहारा अंत नहीं किस पारावारा हुक्मे तार अधर रहावे हुक्मे उपजा हुक्म समावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनकरंग प्रकार कर कर देखे अपनी वड्याई नानक सब मह रह समाई प्रभ भावै मानुख गत पावै प्रभ भावै ता पात्र त्रावै प्रभ भावै बिन सास तिराखै प्रभ भावै ता हर गुण भाखै प्रभ भावै ता पत ते उधारै आप करै आपन विचारै दुहा सिरिया का आप स्वामी खेलै बिरसै अंतर जानी जो भावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर नावै कहो मनुख ते क्या होया वै जो तिस भावै सोई करावै इस कै हाथ होए ता सब किछले जो तिस भावै सोई करे अनजानत बिथिया मह रचै जे जानत आपन आप बचै भरमे भूला दह दिस्तावै निमख माही चार कुंठ फिर आवै कर कृपा जिसा

दृष्ट कछु न आवे तिस तत्काल दह दुष प्रगटावे जा को अपनी कर बख्शीस ता का लेखा न गण जगदीश जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बंत आप बनाई नानक जीवे देख बढ़ाई इसका बल नाही इस हाथ कर्म करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावै सोई पन थियो कबहू ऊंच नीच में बसै कबहू सोग हर्ष रंग हसै कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू ऊब आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार कबहू नृत करै बहुपात कबहू सोय रहै दिन रात कबहू महाक्रोध विकराल कबहू सर्व की हो तरवाल कबहू होए बह बड राजा कबहू भेखारी नीच का साजा कबहू अकीर्त में आवे कबहू भला भला कहावे ज्यो प्रवरा खै तिव ही रह गुर प्रसाद नानक सच कह कबहू होए पंडित करे बख्यान कबहू मोन धारी लावे ध्यान कबहू तट तीर्थ स्नान कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया अनक जोन भरमे भरमिया नाना रूप ज्यो स्वांगी दिखावे ज्यो प्रभ पावे तिवै नचावे जो तिस पावे सोई होए नानक दूजा अवर न कोय कबहू साल संगत ए पावे उस स्थान ते बहुर न आवे अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मन तन नाम रते एक रंग सदा बसे पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुर्बान श्लोक

नानक गर्भ गले अष्टपदे जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जन न जो बनवंत सो होवत विस्ताका जंत आप स्वाओ कर्म बंत कहावे जन्म मरे बहुत जोन प्रमावे धन भूम का जो कर अभिमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे नानकी हां मुक्त आगे सुख पावे धनवंता होय कर गरबावे तृण समान कछ संग न जावे बहुलस्कर मानुख ऊपर करे आस पल भीतरता का होय विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन मह होय जाय भस्मंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जा का मिटा अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हम तारे शर्म पावे सगले बिरतारे अनक तपस्या करे अहंकार नर सुर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म निंद्रवै हर दरगह को कैसे गवै आप को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जाका मन होए को नानक ताकी निर्मल सोए जब लग जाने मुझ ते कछ होए तब इसको सुख नाही कोए जब ए जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग नहीं चलना ही टीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हाँ छूटे सह सिखते लख कौ उठतावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनक भोग दिखिया के करे न तृप्तावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजे स्वप्न मनोरथ बिरथे सब काजे नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी किसै प्राप्त होए कर्ण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप कर्ण करावन करने हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसे दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो किच कीनो सु अपने रंग सब ते दूर सब हूँ कै संग बुझे देखे करे विवेक आप है एक आप है अनेक मरे न दिस आवे न जाए नानक सद ही रहया समाए आप उपदेश समझे आपे रचिया सब कै साथ आप कीनो आपन विस्तार सब कछ उसका ओ करने हार उससे भिन्न कहो किछ होए थान तनंतर एक सोए अपने चलित आप करने हार कौतुक करे रंग आपार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वकियानी सच सच सच सब कीना कोट मधे किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी।

संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी। संत कै दुखन आर जा कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुटै, संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक न पाए, संत कै दुखन मत होए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन, संत के हते को रखै न कोय, संत कै दुखन तन त्रस्त होए, संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक भी करै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग जों लवै, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा में जलै, संत कै दुखन सब को छलै, संत कै दुखन तेज सब जाए, संत कै दुखन नीच नीच आए, संत दुखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावै ता ओए भी गत पाए, संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन ना पाई, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन, संत के निंदक को सर्द रोग, संत के निंदक को सदा विजोग, संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसै का नहीं मित, संत के दुखी को दान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा भिकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख ना सुख के तरे, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत पावे ता ले मिलाए, संत का दुखी अध बीच से टूटै, संत का दुखी कितै काज ना पहुँचै, संत के दुखी को ध्यान परमाई है, संत का दुखी उजड़ पाई है, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किछ नाहीं, आपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी पावन राखन हार, नानक संत पावै तै लै उबार, संत का दुखी यों बिललाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजा, ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटै अकेला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माहीं दोहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सदमित्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस पावै सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है, संत के दुखी की पूजा न आशा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख न पृष्ठ कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए, पया किरत न मिट कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब घट तिसके ओह करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तद करहो दिन रात, तिसह त्याग हो सास गिरास, सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा कोठिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनो कृपा करे तिस अपन नाम दे, बड़ भागी।

जाकर सिमरन उधरिया नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गंढ नहार गोपाल सर्व दिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस ते व्यर्था कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए जे सौ प्राणी लोचै कोय जिस बिन नाही तेरा किछ काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोहै प्रभ की जोत सगल घट सो है धनवंता होए क्या को गर्व है जा सब किछ तिसका दिया दर्ब है अत सूरा जे को कहावै प्रभ की कला बिना कहतावै जे को होए वह दातार तिस देनहार जाने गावार जिस गुर प्रसाद टूटै हां रोग नानक सोजन सदा अरोग ज्यों मंदर को था मैं थमन त्यों गुर का शब्द मन अस्तमन ज्यों पाखान नाव चढ़ तरै प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै ज्यों अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन होए विगास ज्यों महा उद्यान में मार्ग पावै त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावै तिन संतन की बाछो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर्ख काहे दिल लाइए पुरब लिखे का लिखिया पाइए दुख सुख प्रभ

लब्ध रहो रसलो भी पतंग, राम नाम जप हृदय माहि, नानक पद सेती घर जाहे, जिस वखर कौ लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया, तज अभिमान लेहो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल, लाद खेप संत है संग चाल, अवर त्याग बिख्या जंजाल, धन धन कह सब कोय, मुख उज्जल हर दर गह सोय, एह वापार विरला वापार है, नानक ता कह सद बलिहार है, चरण साध के धोए धोए पियो, आप साध को अपना जियो, साध की धूर करो स्नान, साध ऊपर जाइया कुर्बान, साध सेवा वड भागी पाई है, साध संग हर कीर्तन गाई है, अनक बिघन ते साधु रख है, हर गुण गाय अमृत रस चख है, ओट गही संत हंदर आया, सर्व सुख नानक ते पाया, मृतक को दीवा लनहार, भूखे को देवत आधार, सर्व निधान जाके दृष्टि माहे, प्रभु लिखे का लहना पाहे।

नानक कै मन इह नराव मनसा पूर्ण सरणा जोग जो कर पाया सोई होग हरन भरन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर।

तैसा नानक जान, नाना रूप नाना जाके रंग, नाना देख करह एक रंग, नाना विद कीनो विस्तार, प्रभ अविनाशी एक अंकार, नाना चल करे किन माहे, पूर रहे ओ पूर्ण सब ठाए, नाना विद कर बंत बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, सब घट तिसके सब तिसके थाओ, जप जप ती वै नानक हर नाओ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन सर्वन, कर कृपा जिस आपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए, रूप सत जाका सत अस्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख सब माहे समाणी, सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करणी निर्मल निर्मली, जिसह बिजाए तिसह सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जा कर दै प्रवेश, सत नित बुझै जे कोई, नाम जपत ताकि गत होए, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सृष्ट सो करण हार, अगर न बुझ

सास सास सुमार है, अपने जनका पर दाक है, अपने सेवक की सर पर रख है, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप पत्र रख है।

पाप मिटावे। आवर स्यान सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान ना होवे तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पै।

पार ब्रह्म एक है आप नहीं कछ परम सहस सियाणप लिया न जाइए नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइए सफल दर्शन पेख पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे सुनकर बचन करन आघाने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुरख हो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेख हो संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जेहवा एक पुस्तत अनेक सतपुरख पूर्ण विवेक काहू बोलना पहुंचत प्राणी अगम अगोचर सब निर्बानी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किन न पाए अनक भगत बंदन नित करहे चरण कमल हृदय सिमरहे सद बलिहारी सतगुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावे जन कोय अमृत पीवे अमृत सो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणतास आठ पहर हर का नाम ले।

ठांड वर्ताई अनंत भया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंधेसे साधु के पूर्ण उपदेशे पौ चूका निर्भौ हे वसे सगल व्याद मन ते खै नसे जिसका सातन कृपा धारी साध संग जप नाम मरारी थित पाई चूके प्रम गवन सुन नानक हर हर जस सरवन निर्गुण आप सरगुण ही ओही कला तहार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ

होए उधार। हर हर सिमर प्राण आधार, अनक उपाव न चूटन हारे। सिमरत शास्त्र भेद विचारे, हर की भक्त करो मन लाए। मन बंछत नानक फल पाए, संग न चालस तेरह तना। तू क्या लपटा है मूर्ख मना, सुत मीत कुटुंब अर बनता। इन ते कहो तुम कवन सनाता, राज रंग माया विस्तार। इन ते कहो कवन छुटकार, अस हस्ते रथ हसवारी। झूठा डंप झूठ पासारी, जिन दिए तिस बुझे न बिगाना। नाम विसार नानक पछताना, गुर की मत तू लेह आने। भगत बिना बहु डूबे स्याने, हर की भगत करहो मन।

प्रभु की दृष्ट महासुख होए, हर रस पावे दुर्लभ कोए। जिन चाख्या से जन तृप्ता ने, पूर्ण पुरुख नहीं डोलाने। सुभर परे प्रेम रस रंग, उपजा चाओ साध कै संग। परे शरण आन सब त्याग, अंतर प्रगास अनदिन लिवलाग। बड़ भागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनता पूरी भई, सतगुर ते निर्मल मत लई।

जन्म जन्म का टूटा गंढ है, गुरपुरै तत है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो यो काम, आन त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पाव हो, आप जपो हो अवरह नाम जपाव हो। भगत पाए तरिया संसार, बिन भक्ति तन होती छार, सर्ब कल्याण सुख निध नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम, सगल दुख का होवत नास, नानक नाम जपो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ, मन तन अंतर इही सुआओ, नेत्र हो पेख दर्द सुख होए, मन बिकसै साध चरण धोए। भगत जना कै मन तन रंग, बिरला को पावै संग, एक बस्त दीजै करमया, गुर प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्व समाए, प्रभ बख्शंद दीन दयाल, भगत वच्छल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल, आदि पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत पाए लावै मन हीत, हम निर्गुणियार नीत अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए, अंक राज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर हर नीत, भले सुकरणी शोभा धनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक परगा।

अस्तपदी जब अकार इहो कसना दृष्टेता पाप पुन तब कहते होता जब धारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हर्क शोक कहो किसे व्यापत जब अपन आप आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम अपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभु केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस को गनी जब एक हर अग्न पार तब नर्क स्वर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज स्वभाय तब शिव सकत कहो कित ठाय जब आप है आप अपनी ज्योत धरे तब कवन निड्र कवन कत डरे अपने चलत आप करने हार नानक ठाकुर अग्न अपार अब नासी सुख अपन आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ बिनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की प्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपन आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह शल छिद्र लगत कह पीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तह किसे भूत कवन तृप्तावे करण करावन करना हार नानक करते का नाही सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जह सर्व कला आप है परवीन तह वेद देव कहाँ को चीन जब आपन आप उतार है तो सगन अपसगन।

जय अचल अशेद अभेद समाया उहां किसे व्यापत माया आप कौ आपै आदेश त्यो गुण का नाहीं प्रवेश जय एक एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जय आपन आप पतियार तह कौन कथा कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा नानक आपस कौ आप है पहुंचा जय आप रचयो प्रपंच अकार त्यो गुण में कीनो विस्तार पाप पुन तह पई कहावत को नर्क को स्वर्ग बंछा।

अनक प्रकार कियो बखियान आपन खेल आप कर देख खेल संकोच है तो नानक एक है जह अवगत भगत तह आप जह पसरै पासार संत प्रताप दोहूं पाख का आप है धनी उनकी शोभा उन्हों बनी आप है कौतुक करह अन

अथाह अगणत अतोले, ज्यों बिलावहु त्यों नानक दास बोले। श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार, नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार। अष्टपदे आप कथा आप सुनने हार, आप है एक आप विस्तार। जंत पावे तं श्रेष्ठ उपाय, अपने पाने लय समाये। तुम ते भिन्न नहीं किछ होए, आपन सूत सब जगत परोए। जा को प्रभु जीव आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तक कविता, नानक सगल सृष्ट का देता। जी जंत्र सवता के हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस रात

अपने कर्तव जाने आप अंतरजामी रहो व्याप प्रतपाल जीअन बहु पात जो जो रचे सो तिसे त्यात जिस भावै तिस लय मिलाए भगत करहे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक इक जान्या जन लागा हर एक नाए तिसकी आस न बिरथी जाए सेवक कौ सेवा बन आए हुक्म बूझ परम पद पाए इसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार बंधन तोर भय निर्वैर अनगन पूजे गुर के पैर एह लोक सुखिए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम तत करो विचार दुर्लभ दे का करो उधार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का एह सुहाओ आठ पहर प्रभ देखो नेरा मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा सुनो उपदेश हृदय बसाव हो मन इच्छे नानक फल पाव हो हलत पलत दोय लेहो सवार राम नाम अंतर उरतार पूरे गुरु की पूरी दिखिया जिस मन बसै तिस साथ परीखिया मन तन नाम जपहो लिवलाए दुख दर्द मन ते पाओ जाए सच व्यापार करहो व्यापारी दरगह निभह खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक बहर न आवह जाहे तिससे दूर कहाँ को जाए उबरे राखन हार ते आए निर्भौ जपै सगल भौ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखै।

ठाढा गुरसूरा नानकता के कार्य पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन देखत उदरत श्रेष्ट चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतरजामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सो होत निहाल ताके नित न आवत काल अमर भय अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया।

ताकि गत मित कहीं न जाए, दूसर होए तसो जी पाए। तिसका किया सब परवान, गुरप्रसाद नानक एह जान। जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए। ओह धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। तन तन तन जनाया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का एह सुआओ, जन के संग चित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जा का नाओ। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म नित कर पेख। सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। आस नित त्यागो तरंग, संत जना की धूर मन मंग। आप छोड़ बेनती करो, साध संग अग्न सागर करो। हर तन के पार ले हो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद। नरक निवार उदार हो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो। चित जित वो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूर्ण कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। उत्तम श्लोक साध के बचन, अमलीक लाल एह रत्न। सुनत कुमावत होत उधार, आप तरह लोक है निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजय, सुन सुन अंद करे प्रभ का जय। प्रगटे गोपाल महांत कै माथे, नान कोदरे तिन कै साथे। शरण जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए। मिट गए बैर भय सबरेन।

सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक ने भी खेप हमारी प्रभ की औसत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निधान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बहुर न होवे आवन जान हर धन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नवनिध बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तप योग प्रव ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत्कर वेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख तने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपै मन कोए सब जुग मह ताकी गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए पीत तिस जन आवै हर प्रभजीत जन्म मरण ता कर दुख निवारै दुलभ देह तत्काल

गल सुन के बाबे दी सिंघां दी अखां दे विचों खून उतरे। सिंघां ने सति श्री अकाल दे जकारे छड्डे ते सारे सिंह सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िए दे उदारे कट्ठे हो गए कि जत्थेदार सानू की हुक्म दे रहे। ये चार जत्थे सरदार लहणा सिंह, सरदार सोभा सिंह ते सरदार बघेल सिंह, सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िए दी कमान दे हेठां कम कर रहे सी। सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िए ने म्यान दे विचों तलवार धूली ते एक लकीर बगल दिती ते खालसे पंथ दे सामने रो भरी तकरीर इउं करदा बई। जगवीर सिंह जोगी जलालाबादी, कमलजीत सिंह कोमल, रजिंदर सिंह राजन ते गुरबख्श सिंह अलबेले दा ढाडी जत्था इउं बयान करदा है।

0: सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िए दी जवान दे विच्चों एनियां गल्लां बाबे ने सुनिया। बाबे नू नेचा हो गया कि जो गल सरदार ने कह दिती है पंथ इस तो जरा भी पासे नहीं जा सकता, ते पंथ ने प्रशादा बिल्कुल नहीं चकना जे मैं ना गल दसी। बाबा जी ने कहा सरदार जी गल मैं दस दिना पर एक शर्त दे उत्ते के मेरे गल दसन तो बाद अमल उस गल दे उत्ते प्रशादा छके तो बाद होवे। सरदार जी ने कहा बाबा जी ए गल बाद विच सोची जावेगी, पहला तुसी अपना दुख दसो। बाबा जी ने जो अपनी अखां दे नाल वेखिया अखां दे विचों हंजू केर के सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िए दे अगे सारी कहानी इउं सुनाई। बई
1: अज मेरे दिल उत्ते जिस

सरदार जस्सा सिंह दे वारी वारी कहण दे उत्ते बाबा जी ने कहा, सरदार जी मैं मेरे नाल बीती सारी दस सकदे ते पर सिंघां नूं प्रशादा छक लैण दे बाद विच दसूंगा। सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया दी अखां दे विच खून आ गया। सरदार ने कहा, बाबा जी तू सिंघां दा सेवादार बाबा, किसे दुख दे विच होवें तैनू कोई दुख होवे ते धन गुरु श्री गुरु कलगिया वाले दा खालसा प्रशादे छक लवे। उधरों सिंह प्रशादा छकण दी बिल्कुल तैयारी दे विच सरदार बहादुर सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िए ने ललकार के सिंघां नूं कहा, सिंघो जिन्ना चिर बाबा जी हड्ड वीती नहीं दसदे उन्ना चिर किसे ने मूंह दे विच इक बुरकी भी नहीं पाउणी। सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया सारे जत्थे नूं ललकार के इउं कह रहा, बई

0: तेरे स्कूल अंदर मैं ते सुनिया सी लगदी फीस कोई ना, सोभा सुन के मैं दाखल आन होया, देने पैणगे फीस दे फीस कोई ना। ऐसी जग ते कैन मिसाल कीती, जी जी दुनिया ते करदा रीस कोई ना। चाती मारी मैं जदों क्लास अंदर पढ़न वालियां दे तरां ते
1: फीस कोई ना।
0: सतगुरु दे चरणा विच लवाइए हाजरियां, आखो गज के वाहे गुरु जी का खालसा
1: वाहे गुरु जी की फतेह।
0: अबदाली दे हमलियां दा जिक्र करे बिना सिखां दा इतिहास पूरा नहीं हुंदा। कोई भी जरवाणिया दे टाकरे उत्ते ना खलोया, ओ बेचारियां मापिया दे सामने ताहा मार के हाल पुकार इउं करदीए, उन्हां दे दर्दां परे वार्तालाप नूं गुरबख्शी अलबेले दा ढाडी जथा इंज बयान करदा है।

0: पुस्तक रविदास जी का उच्चारण किया होया है। इस दे विच भगत रविदास जी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रेज कर रहे हैं कि ओ प्राणा दा नाथ, सानू प्राण जीवन जिंदगी देने वाला प्राणा दा नाथ परमात्मा वाहिगुरु, मिलत प्यारो प्राण नाथ, ओ प्यारा प्राणा दा नाथ वाहिगुरु, मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत से, किस भक्ति दे द्वारा ओ प्यारा वाहिगुरु मिलता है।
1: विलियम स्लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हैं कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नु पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अति फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

नारायण नरपत नमस्कारे, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहे तारे, कमन कमन कमन गुण कहिए, अंत नहीं किछु पारे, लाख लाख लाख कई कोरे, को है ऐसो विचारे।